0: attitude a provoqué justement cette catastrophe à cause de la vitesse justement qui a été accumulée par rapport à cette chute et au volume de roches et de glace qui s'est détaché. Et comme on le sait, l'eau, la boue, la glace à une vitesse comme ça, c'est inarrêtable. Donc, toutes les infrastructures, toutes les structures ont été détruites. Perte de vie humaine, malheureusement, ce qui est vraiment très triste. Et ça vient montrer encore une fois notre fragilité, notre vulnérabilité par rapport aux impacts du changement climatique. Ce sont des choses qui avaient été prédites dans le passé, qui arrivent aujourd'hui, qui arrivent de plus en plus souvent. Et ce sont des choses, à mon avis, qui risquent malheureusement d'arriver encore, pas seulement dans les montagnes de l'Himalaya, mais pas très loin de chez nous aussi.
1: Merci
0: Alors?
1: beaucoup, Vassen. Donc, la technique me signale que peut-être nous avons récupéré un intervenant au Népal, Mr. Kanal au Diwan. Allô, est-ce que vous nous
2: Yeah, hi
1: entendez?
2: everybody. Good evening. Hi everybody. Good evening. How are you? Good
1: Fine,
2: evening.
1: fine. We are very happy to welcome you. So we were waiting for you, Mr. Canal. We understand that internet connection is very good, but we thank you very much. Please, can you explain to our listeners this afternoon what's the situation, how the Nepalese are coping with the day after, if we can say that?
2: Okay, Sanjay sir, you have to explain
3: Si.
2: in the France.
3: Okay, no problem.
2: सबसे पहले तो ऐसा हो गया कि अचानक फ्लोट आ गया, तो जो चाइना का जो बॉर्डर है उधर से इतना बड़ा फ्लोट आ गया कि मान लीजिए कि जो 9 मंजिला जो बिल्डिंग है उसको भी तबाह करते हुए एक ही बार में तूफान जैसा आ गया, और उसकी थी इतनी लंबी थी स्पीड कि जो बुलेट ट्रेन है ना उससे भी ज्यादा,
3: जी
2: 9 सेकेंड प्रति किलोमीटर के रफ्तार से आया था, 9 सेकेंड प्रति किलोमीटर के रफ्तार से आया,
3: कितना कितना
2: 9 सेकेंड प्रति किलोमीटर की रफ्तार से। आप एक्सप्लेन करिए इनको फ्रांस में।
3: ओके ओके आलो
1: Oui, on vous écoute, Mr. Sanjay.
3: Oui, le problème c'est ça, la glace qui nous a écrasé depuis la Chine.
1: Oui, d'accord. Et ensuite, comment la situation était au Népal en ce moment?
3: Non, là, je peux dire, moi, comment ça me passait quand ça flotte là, quand je viens là.
1: D'accord. Et alors, est-ce que Mr. Canal est capable de dire nous justement quelle est la situation actuelle sur le terrain au Népal? Pensez-vous à une recherche peut
3: OK.
1: continuer? Comment la population peut vivre ça?
3: OK.
2: Actually, flood is the flood coming the minimum is the
3: नो भाई
2: nine
3: भाई
2: nine
3: साहब,
2: जी
3: भाई साहब ये बोल रहा है कि अभी अभी कैसा है वहां पे, अभी सिचुएशन अभी अभी
2: ना ना अभी का सिचुएशन है कि जो हाइड्रो पावर के जो टनल के अंदर जो फंसे हुए आदमी हैं अभी भी उनको नहीं निकाल पा रहे हैं। आज 9 दिन हो गया है, 9 दिन में भी वो पूरी तरीके से अंदर जाके टनल को फोड़ के आदमी को नहीं निकाल पा रहे हैं। वहां पे 3 बड़े बड़े हाइड्रो पावर थे, 700 मेगावाट का हाइड्रो पावर था, उसके अंदर जो टनल में जो आदमी काम कर रहे थे उसमें एक एक टनल में 375 आदमी, एक टनल में 150 आदमी अभी भी फंसे हुए हैं। उनको निकालने के लिए कोशिश किया जा रहा है लेकिन अभी तक नहीं निकल पा रहे हैं। और वहां का सिचुएशन ऐसा है कि ना पुल है ना कुछ है, जो समुद्र के जो जो मान लीजिए जो रिवर है उसके जो दूसरी साइड में जो है जो आदमी है जितने भी जो पब्लिक हैं उनके लिए राशन भी अभी पहुंचना मुश्किल है, कुछ भी पहुंचना मुश्किल है, बहुत बुरा हालत है वहाँ का। आपने नेट में भी देखा होगा जो भी वहाँ पे जितने भी बॉडी हैं उनको जाके नहीं निकल पा रहे हैं पूरी तरीके से, और वहाँ पे जो कौवा जो चील है वो बॉडी को खाते हुए नजर आ रहे हैं, आप ये भी देख रहे होंगे।
3: ओके ओके वेट करो alors ce que monsieur canal pg à moi là il a à peu près 150 à 200 du monde qui tasse dans un tunnel que pas capable de les autres. Allô?
1: D'accord, oui, monsieur.

0: Monsieur Sanjay, donc est-ce que c'est dans quelle région c'est? Est-ce que c'est à la frontière entre le Tibet et la Chine, côte catastrophe line produire?
1: Oui, quand ça se trouve là. Parce que tu as bien tout ça là-bas, dans du monde qui nous tasse là, donc on ne peut pas faire qu'à tirer. Et dans mon corbeau, dans mon oiseau qui veut venir détruire ça dans du monde là.
0: D'accord, est-ce que vous pouvez dire nous que Ban Oiseau peut attaquer Ban Jimoun qui décédé, Ban Dépouille?
1: Oui. Et dans mon du monde qui nous tasse dans un tunnel, qu'on ne peut pas faire qu'à tirer.
0: D'accord. Diwan, est-ce que vous nous entendez?
1: Oui.
0: Diwan Koumantamang, est-ce que vous nous entendez?
1: Pardon?
0: Non, pas.
1: Yeah.
0: Oui, nous avions aussi un intervenant francophone, Diwan Kouma, mais il est en train d'expliquer que le temps est très mauvais là-bas. Comment est le temps au Népal en ce moment? Est-ce que ça bloque les secours? Mr. Sanjay, est-ce que vous pouvez poser la question à Canal?
2: Ah,
1: Dis-moi.
0: Yes.
2: Allô? Capucine, bye.
0: Yes.
2: Allô? Ah,
0: Oui.
2: Capucine, vous voyez, nous mettons down.
1: Hey, bye, ça, Moussam, qu'est-ce qu'il y a là-bas, Abhi?
2: अभी तो मौसम सही है, लेकिन अभी तो दोबारा नहीं आया हुआ है फ्लैट, लेकिन ये सब का अभी मौसम सही है, लेकिन आदमी को रेस्क्यू करके निकालने में बहुत मुश्किल हो रही है, क्योंकि दूसरी
1: नहीं,
2: तरफ वही
1: बरसात
2: जितने
1: है।
2: अभी अब नहीं बरसात नहीं है, एक्चुअली क्या है कि सारे जो लाश है ना वो सड़ गए हैं, और जो हेलीकॉप्टर वाले जितने भी हैं वो उठाने के लिए मना कर रहे हैं, क्योंकि सब दुर्गंध वहां पे फैल गया है ऑलरेडी, तो
1: ओके
2: इसके
1: ओके
2: लिए वहां पे काफी मतलब वो चाहिए, जो कि अभी भी वहां पे काफी मतलब ये ऐसा केमिकल वगैरह चाहिए जो कि उससे दुर्गंध ना आए और आदमी को कोई ज्यादा परेशान ना हो।
1: ओके ओके ओके हेलो।
2: और सुनिए,
0: Oui,
2: और
0: on vous écoute. On vous écoute.
1: une personne qui est décédée il y a plusieurs jours, alors j'ai des difficultés pour retirer sa main personnage, j'ai fini de composer et je vais faire par exemple l'ODL là-bas. Alors, je vais bien trouver des autres moyens pour capable retirer sa main personne là.
0: Est-ce qu'il y a la police qui peut bloquer l'extraction de Samandimoula? Est-ce qu'il y a la
1: C'est
0: neige, il y a
1: ça,
0: la glace?
1: l'hélicoptère peut retirer les autres, mais là, le gouvernement est bloqué pour le moment parce qu'il ne faut pas qu'on ait besoin de désaffecter pour retirer sa main personne là.
0: Est-ce
1: Je
0: qu'il
1: vais l'ODL.
0: est-ce que le temps peut est-ce que le temps là-bas peut permettre une bonne opération ou bien il y a la
1: Non,
0: neige, il
1: non,
0: y a la glace?
1: les temps bons.
0: Ok, d'accord, merci beaucoup pour ces précisions. Sinon, est-ce qu'il survivant après la catastrophe, est-ce qu'il installe ban camp, ban ce qui ban logement, ce qui ban logement, une détruire côté alimentation, côté humanitaire, comment ça peut passer?
1: OK. Et Kana Sahab?
2: हाँ बोलिए।
1: ये जो आदमी को जो बचा है उन लोगों के लिए क्या क्या तैयारी किए गए हैं?
2: अभी उनके जो बचे हुए हैं उनके लिए काफी रात तो कलेक्शन हो गया है, लेकिन उन वहां तक नहीं पहुंचा है, क्योंकि क्योंकि जितने भी पॉलिटिकल पार्टी है ना नेपाल में सब ऐसे ही हैं, लेकिन अभी जो सत्ता जो गवर्नमेंट में आई हुई है वो अपनी तरीके से कोशिश कर रही है। उसने आज एक चौंकाने वाली बात की कल, उसने जो वहाँ का पीएम है, हमारा यहाँ का जो पीएम है, उसने उसने क्या बोला कि अभी तक जो नेपाल में है ना, अभी तक जो जो टनल के अंदर से आदमी को निकालने के लिए कोई मशीन है ही नहीं ओल्ड में, ऐसा तो हो ही नहीं सकता, ओल्ड में कोई मशीन
1: नहीं,
2: नहीं है तो
1: ये ठीक
2: वो
1: है, लेकिन जो आदमी को निकाल गए हैं, जो बचे हैं, उन लोगों के लिए घर, मकान, कपड़ा, खाने
2: अभी
1: का, ये क्या
2: अभी
1: कैसे
2: कुछ
1: किए
2: भी
1: हैं?
2: नहीं है, अभी तैयारी है, अभी तैयारी पूरा नहीं किया गया है, अभी स्टार्ट नहीं किया गया है, अभी तो सारे जो लाशें हैं उनको ही निकालने में दे दो डेथ बड़ी है, अभी उनको ही निकालने में लगी हुई है गवर्नमेंट।
1: ओके हेलो।
0: यस, नुपे कुटू मिस्टर संजय।
1: Oui. Et M. Canal, pour un peu comment du monde qui ne sait vivre, là, je ne peux pas faire non, rien pour le moment, là. Là, je vais concentrer dans une personne qui est décédée pour retirer les autres.
0: D'accord. Merci, monsieur Sanjay. Dis-moi, monsieur Sanjay, est-ce qu'il y a l'occasion ou de vous rendre au Népal et est-ce qu'il connaît sa région, connaît sa catastrophe l'année passée?
1: Oui.

0: परिवर्तन का कारण है, क्योंकि जो उच्च जो हिमालय है ना, हिमालय जितना भी जो एवरेस्ट है, जितना भी मतलब जो बर्फ एरिया है पूरा पिघल गया है गर्मी के कारण, ये उच्च तापमान वृद्धि के कारण है और कुछ नहीं। जैसे यूक्रेन और वो लड़ाई और ईरान अमेरिका लड़ाई, ये सब का जितना भी ये जो तापक्रम है ना, सब नेपाल के ऊपर जाता है और धीरे धीरे जो एवरेस्ट है वो पिघल रहा है, उसी का सिचुएशन है। मेरे एक मैसेज किया है ग्रुप में, उनको देखने के लिए बोलिए।
1: Monsieur Canal, comment bien un amant hélicoptère qui peut s'appeler bronzé au banc du monde, et le banc transport, mais la place que tu n'as pas vu capable d'aller.
2: D'accord, très bien. Et alors, c'est
1: Allô?
2: vrai que nous ne perdons la communication avec l'un de nos intervenants, mais d'après la situation, donc il y a beaucoup de soins, de logistique qui a besoin. Nous avons de la nourriture qui est en manque. Nous avons
1: Oui.
2: aussi, bien sûr, du matériel chauffant et beaucoup d'accès aux villages sont bloqués par les coulées de boue. Donc, une situation vraiment chaotique, on peut dire, et où quiconque bien le pays WPCGBR. Comment est-ce qu'IUP visualise ce drame? Et aussi, il y a une question un petit peu plus délicate. Est-ce qu'il sera possible pour vous, notamment, de
3: De repartir au
2: repartir au
3: Népal,
2: Népal?
3: si je pouvais partir demain, j'allais partir. Mais pour vous dire, et j'ai un ami moine qui a perdu ses parents, et lui, il est à Katmandou, mais il peut pas partir là-bas. Il peut pas partir à région de Rasoa, là où ça s'est passé, ben justement parce que les routes sont coupées. Et lui, il est moine, c'est un peu difficile pour lui aussi de quitter le monastère pour aller là-bas. Donc j'imagine l'état de la route là-bas. Parce que des fois, vous voyez, c'est single lane. Et puis, les bails, d'un côté, vous avez la montagne, vous avez les falaises de l'autre côté. Donc, il y a les risques d'éboulement constamment. Mais même si l'intervenant nous a fait quand même peur par rapport à les gens, enfin, tout ce que nous, on doit se préparer à faire face. Mais c'est pas ça qui va nous empêcher de voyager. Donc, au contraire, je pense que le Népal a besoin de visiteurs pour pouvoir, comme si, remonter la pente. Et y a le remote port, c'est vrai, il y a des problèmes, mais le Népal, c'est assez grand. Donc, c'est dommage qu'il y a des gens qui sont en train d'annuler leur voyage alors que le Népal a besoin de sous pour refaire l'économie.
2: Vous ne croyez pas si bien dire, nous avons une estimation approximative du montant de dégâts. Il est estimé que les dommages sont estimés à 1 trillion de dollars américains. Plus précisément, 1 000 billions de dollars américains.
3: Ça donne le vertige.
2: Ça donne le vertige et aussi, surtout, se fait poser la question, comment est-ce que le Népal a appelé à l'aide? Mr. Canal, if you are still listening to us, has the Nepalese government already seek financial assistance with all international organizations?
0: Yes, some department is already organization, but it is not fulfilled as per the requirement. Because now in the village area already too much poor people already. But now it is nothing, anything, sir. All is the finished. Like it is all home finished, each and everything finished now. So too
1: नहीं,
0: much
1: दूसरे
0: problem
1: दूसरे
0: now.
1: दूसरे काउंट्री लोग मदद कर रहे हैं आप लोगों का. ओके
0: हाँ कर रहे हैं थोड़ा थोड़ा, मैंने वही तो बताया उसको, कर रहे हैं उसमें से चाइना इंडिया थोड़ा थोड़ा कर रहा है, बाकी कंट्री सबसे ज्यादा यूएई ने किया है मदद, अभी यूएई ने सबसे अच्छा मदद किया है, बहुत अच्छा मदद किया है, अभी भी राशन पानी वो वहां से कुछ भेज रहे हैं जबकि यूएई में कुछ होता नहीं है, मतलब यूएई के से खुद काठमांडू आके उन्होंने मतलब बहुत अच्छी तरीके से वो किया, अभी विश्व में सबसे ज्यादा यूएई ने किया है नेपाल को अभी।
2: Yes, Mr. Sanjay.
1: En Alain, en Alassie, en Ukraine, peut aider beaucoup. Mais en a une place qui n'est pas foutue de Banjimoun.
2: D'accord. Est-ce que Kiefer Paprika, est-ce que c'est à cause de ben la route bloquée, de ben conditions difficiles, de manque de matériel, Kiefer Paprika?